चेहरा तो नहीं देखा लेकिन उसका असली नाम भी जानते हैं या? मैंने पूछा। उसका नाम सोनी है और खुदा करे वो बिल्कुल अपने नाम की तरह ही सोनी हो। और जानती हूँ वो कितनी समझदार लड़की है, बिल्कुल जज्बाती नहीं। कहती है कि मैं जाती तौर पर किसी से मशवरा करके ही कोई कदम उठाऊंगी। भैया तो जाने क्या क्या बोलते रहे लेकिन मेरे लिए वो अल्फाज जलती हुई चिंगारियों के सिवा कुछ न थे। पत्थर की मूरत बनी मैं अपने भाई को मुसर्रत से झूमती देखती रही। मुझे तो खुद भी शर्म आ रही थी, खुदा ये क्या हो गया। और फिर मैंने उस मनहूस नेट से हमेशा हमेशा के लिए रब्ता खत्म कर दिया। समझ में आ गया वाक्य? जिससे चैट कर रहे हैं आपको क्या मालूम वो मुसलमान भी है या नहीं, आपके रिश्ते के काबिल भी है नहीं, या वो पहले से ही शादीशुदा है, या बच्चों का बाप है, या कोई ऐसा शख्स है कि जिसके अखलाक और किरदार के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। टेलीफोन पर एटलीस्ट आवाज सुनने से किसी की उम्र और किसी और चीज का पता चल जाता है, मगर नेट पे तो कुछ भी किसी का नहीं जाना जा सकता। और ये भी हो सकता है कि कोई लड़की लड़का बनकर बातचीत कर रही हो। तो इस किस्म की चीजें जो है बसा औकात मुश्किलात पैदा करती हैं। और ये मुश्किलात ना भी पैदा हो तो बात यह है कि वक्त का कितना ज्या है। सिर्फ चैट और गपशप और वक्त गुजारना, ये सब चीजें किसी बामकसद इंसान की जिंदगी में तो नहीं हो सकती।

0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Music Ki, Soch Ki, aur Aapki, Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

0: आप जिम्मेदारी ले सकते हो तो आप कर लें, क्योंकि आप क्यों ना प्यूरो में बैठेंगे तो डेफिनेटली मीटिंग सेम दिन आ सकती है। ये एक एक क्या कहते हैं नेगेटिव चीज है।
1: शाह साहब, आप आखिरी सवाल भी करें और अदनान से इजाजत भी लें।
2: आखिरी चीज बात यह है कि पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि आप रेडियो पे आते हैं और आपने बहुत आप बातचीत करते हैं और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप सही गाइड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यंगस्टर्स में इतनी हिम्मत है कि वो आगे। क्या अभी तक किसी ने वेस्ट लाइन से या कहीं से आपसे राबता किया है कि जी मैं जो है आपके जो क्रिस है आपका जो हल्का है मैं उसके उसके उसमें बैठना चाहता हूँ, या मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, या मैं आपकी पार्टी में ऑलरेडी हूँ और मैं फलके थिंक के फलके उस वेल में जाना चाहता हूँ और वहां जाके तो मैं लर्न करना चाहता हूँ जैसे कि अभी आपने कहा, और मैं भी इस पे एग्री करता हूँ कि सुमेरा ने बहुत काम किया और अपना टाइम दिया तो आज वो कामयाब हुई, क्योंकि यहाँ की जो एजेंसियां हैं वो नजर रखती हैं, ये आप और मैं इस बात पे ही नहीं हम तो वो नजर रखती हैं कि कौन सा आदमी कितनी वैल्यू रखता है, कितना काम करता है, इसके पीछे अवाम कितनी है। लेकिन अगर आप इलेक्ट होकर लोगों को भूल जाए तो वो आपको माइनस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको इलेक्ट होने में बड़ी मुश्किलात आती है। तो आप ये बताएं कि क्या, और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हाईएस्ट कार्ड का आज आया है कि वो जो 2016 में मेरे साथ ही उनको नेशनलिटी मिली थी तो उनकी नेशनलिटी बाप और बच्चों की नेशनलिटी कैंसिल कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो आज उनके पासपोर्ट नेशनलिटी जो है गवर्नमेंट ने हाईएस्ट कार्ड ने उनको कहा कि आप अपनी नेशनलिटी एज ए डेनिश रख सकते हैं, गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
0: सब सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कुछ लोगों ने राबते, ये जब हम मीना बाजार किया था उसके बाद भी मुझे कुछ लोगों ने राबते किए हैं, और मैंने उन्हें कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला आप सब से राबते करूंगा, और मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बाकी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इज्जत दी, आप लोगों ने क्या कहते हैं इतना कर दिया मेरा कि मेरी तो वाइफ कहती है, मेरी फैमिली कहती है अल्लाह करता कि सर तुम 1 साल पहले होता तो अब तुम आज कौंसलर के अंदर बड़े होते हैं, फिर आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिया कि हर बंदे को अब मेरा पता है, जहां जाता हूँ वहां बंदा लोग के मुझे सेंटर हो हमने ये आपकी आवाज से सुना वो सुना है, मैं तो अब ये सोचता हूँ कि मैं किसी सेंटर में जाऊं कि ना जाऊं क्योंकि रोक लेते हैं लोग, आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिया कि लोगों की इतनी इज्जत हो गई है आप लोगों की वजह से, और ये तो आप लोगों का कहते हैं आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है और कि लोग मुझे अब सुनते हैं मुझे गाय पूछते हैं मुझे कहते हैं, मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ कि मैंने अल्लाह से यही सोचा था कि बस मैंने कहा था कि मैं तो मुझे नहीं था पता क्या, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है और आप लोग का शुक्रिया मेरे पे,
1: नहीं,
0: मैं भी एहसान
1: मेहरबानी
0: आपको
1: आपकी, आप टाइम
0: भी
1: निकालते हैं, टाइम पब्लिक के साथ शेयर करते हैं।
0: देखिए राजा साहब ये तो आपकी है कि आप लोगों ने जो इज्जत दी और मैं इसका शुक्रिया अदा आपका कभी बोलूंगा आप लोगों को क्योंकि आप लोगों ने बहुत इज्जत दी है। दूसरी बात रही हाँ यंगस्टर को मैं कोशिश करता हूँ, मेरी अपनी से भांजा है मेरी बेटी है वो जहां जाते हैं वहां वो यंग से पूछते हैं, तो वो यही मैं कहता हूँ क्या आपको जो गाइडलाइंस है आप लोग मैं पीछे हट जाता हूँ आप लोग आगे आ जाएं क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर है और आप लोगों ने ही आप चलना है, मैं तो यही कर सकता हूँ कि मैं करूँ। आपका दूसरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट की डिसीशन, हाँ मैंने देखी है वो डिसीशन और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं 1 मंथ के अंदर 2 ऐसे फैसले दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि इस मुल्क में कोई ना कोई सिस्टम है, पहला एक फैसला जैसे आपको पता है वो हाथ वाला आया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गलती है, और ये भी उनने कहा है कि ये भी उनका अच्छा फैसला है, इससे ये है कि जिन लोगों को पासपोर्ट मिले हुए हैं उनके पासपोर्ट छीनना बड़ा मुश्किल है, अब मेरा जो क्या कहते हैं अभी तो मैंने देखा नहीं है कुछ देर
2: जी
0: बाद
2: यही
0: आप
2: यही यही अदनान, यही मैं आपको रुकूंगा, यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता था कि जो पिछले साल गवर्नमेंट ने कानून बनाए थे कि जब चाहे पासपोर्ट छीन लो, जब चाहे बॉडी सेल्स के बारे निकाल सकते हैं सब कुछ, तो मैं यही आपसे जो मेरी और आपकी गुफ्तगू हुई थी मैं यही चाहता हूँ कि आप अवाम को बताएं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस के बाद तो हमें काफी

0: तहफ़ मिल गया है कि हम अब मसलन सी कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि हमें अगर इनको ले जाना पड़ेगा, हमारी नेशनलिटी छीनी पड़ेगी, तो अब हमें ये कानूनी एक रास्ता तो मिल गया। क्या आप एग्री करते हैं कि हमें कानूनी रास्ता मिल गया है कि हम अदालत में जा सकते हैं, इनको चैलेंज कर सकते हैं?
1: हाँ, ये रास्ता है राजा साहब। देखिए, वो जो जो दो दो दो अलग चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि एक मसला ये है कि ये जो है ना पासपोर्ट वाला कानून, ये उस वक्त भी हमें अंदाजा था कि ये कानून जरा थोड़ा बहुत इसीलिए चेंज किया गया था कि इनको पता था ये एक दो फैसले आने हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला पूरा आएगा हम पढ़ेंगे, फिर मैं डेफिनेटली देखूंगा कि इस फैसले के अंदर क्या लिखा हुआ है और इस फैसले का मतलब क्या है और उस कानून के साथ क्या है। दूसरा जो कानून बनाया गया था ना, वो ये था कि जब आप कि कोई बच्चे गलत काम करें ना बहुत, तो आपकी पूरी छीनी जा सकती है। मेरी इंफॉर्मेशन के बकौल उसका भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और उसका भी फैसला आने वाला है। अब जब वो फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा कि इस कानून के अंदर क्या है। अब मैं आपको एक एक एक एक बात कर देता हूं, मैंने ये, अल्लाह करे कि कोई इस बात को ना ले, हमारे, आपको भी पता है मैं नाम नहीं लेता, मगर हमारा एक पाकिस्तानी भी था इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था, जिसका मुकाम ने छीनने की कोशिश की होगी, चार साहब को आपको पता होगा उस केस का। तो
0: जी
1: आप ये क्या कहते हैं, क्योंकि उसका उसका कोई था, तो ये आप क्या कहते हैं, ये देखा जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्लियर कर दिए कि पासपोर्ट दे के छीनना बड़ा मुश्किल है। अब हो सकता है कि इस पे क्या कहते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे फोन पे तेज कॉल के पीछे के लिंक आने लग जाते हैं, और वो तो शुरू हो गए हैं ना कि ये देखो हम सच्चे थे कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो अब ये देखने की जरूरत है कि हमारा नया जो इंटीग्रेशन मिनिस्टर है मोहम्मद को, और हमारा जो नया जस्टिस मिनिस्टर है ललित गुना वामिंग, वो इस पे कौन सी स्टेटमेंट देते हैं इस फैसले के बाद। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ कि वो
2: चले,
1: जो
2: ये
1: जो
2: आने
1: इस
2: वाला वक्त
1: पर
2: बताएगा। तो शाह साहब इजाजत ले अदनान से, फिर अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं।
0: बहुत बहुत खुशी हुई है, और उम्मीद है कि अगली दफा जब हमारी मुलाकात हो तो हम थोड़ा सा जो कम्यून ज्यादा पावरफुल है या पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, किसके पास कैसे अख्तियार आते हैं, और डेनमार्क की जो मुख्तलिफ कम्यून्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कि आप और जी शान और दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो बकायदा तैयारी से आ रहे हैं, और आप लोगों के पास इल्म है और आप इल्म बांट रहे हैं, और सुनने वालों को एक मुफीद इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्योंकि अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी उम्र इतनी नहीं है कि हम हर रोज बैठ के इसके ऊपर बात करें, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपनी फैमिली अपनी दूसरी जॉब्स को छोड़कर इस पे टाइम देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आपका दिलो जान से दुआ करता हूँ कि आप सियासत में इसी तरह रहे और लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे।
1: शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों फिर इंशाल्लाह ताला बात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज सबको,
2: अल्लाह
0: अल्लाह
2: हाफिज।
0: हाफिज।
2: बहुत शुक्रिया शाह साहब, हम शाम के प्रोग्राम में दोबारा इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। आप साहब दोनों इजाजत लेते हैं, अब हमारा टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा।
0: जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
2: समय नाज़रीन, आप सुन रहे थे अदनान अली अमीन को, और शाह साहब जो हैं वो सवाल जवाब की महफिल में वो उसको ले रहे थे, अदनान को ले रहे थे। समझना, हमारा किसी से मुतफिक करना जरूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, कोई अपनी राय देना चाहता है, तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज का टाइम हाजिर है।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
0: हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।